0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जैसा कि आप जान ही चुके होंगे बाय नाउ कि मैं इटली एक क्विक ट्रिप लगा कर आई हूँ, और जब मैं फ्लोरेंस पहुंची ना इटली में, तो मैंने बहुत सारे कपल्स को आउटडोर डाइनिंग एरियाज में बैठे देखा एंड दे वर शेयरिंग अ लॉट ऑफ देयर फूड. एक सैंडविच के दो हिस्से, एक बर्गर के दो हिस्से, कई बार चीज मोत्सरेला स्टिक से उन दोनों ने लाइक यू नो चीज पुल एक ही स्टिक से कर रहे थे. तो आई वाज लाइक यार इतना सारा प्यार, इतना सारा रोमांस, खाना शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं. देयर मस्ट बी समथिंग स्पेक्टैक्युलर फ्लोरेंस की हवा में. एंड देन आई रियलाइज व्हाट वाज स्पेक्टैक्युलर. स्पेक्टैक्युलर ये था कि फ्लोरेंस इतना महंगा है कि अगर आप एक बर्गर शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है वन ऑफ यू टू विल एंड अप डूइंग द बर्तन इन दैट रेस्टोरेंट लेटर दैट नाइट. पूरी इटली ट्रिप के बाद मैं एक चीज समझ गई, और वो ये है कि दुनिया में कितनी भी कंट्रीज विजिट कर लो, इंडिया
2: तेरी मम्मी की जय.

पार्टी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: है बादशाह।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: जय गुरुदेव। अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमां
3: 13 सप्टेम्बर रविवार
2: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: At the age of 28, आपने अभी तक किसी को ये नहीं बताया that you still sleep at night with your stuffed toys.
2: The secret box.
1: But honestly, this is a jolly cute confession. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई cute confession है, why don't you hit me up on Insta या FB? We'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. So hit me up on the Gram या Facebook. We'll get talking. और मेरे साथ line पर अभी है मेरी mystery caller. Hi, babe.
3: Hi, Rushi. How are you?
1: I am very good. How are you? You sound so cute. Like इतने छोटे से like you know young and precious sound करते हो like a tiny little flower. ऐसे tiny फ्लावर को क्या कन्फेशन होगी?
3: रोशी, मेरा कन्फेशन तो ये है कि आई मेट अ गाय ऑन दिस डेटिंग ऐप एंड ही वाज सो हैंडसम एंड सो क्यूट एट फर्स्ट साइट एंड ही स्वाइप्ड राइट फॉर मी एंड देन आफ्टर वी डिसाइडेड टू गो फॉर लंच.
1: ठीक है.
3: एंड मीनवाइल ऑन दैट वी वर ऑन लंच एंड आई सॉ हिम दैट ही वाज स्टिल स्वाइपिंग लेफ्ट और राइट ऑन दैट डेटिंग ऐप राइट इन फ्रंट ऑफ मी. And that was so unusual, so shocking to me.
1: Huh.
3: I was right there. I decided ki ab to tu bachcha gaya. Phone teri band vajji ke vajji. So maine socha main to yahan pe pura lunch kha kar jaungi and paise bhi nahi dungi. So this is what happened. He had to pay all for that lunch and I think उस दिन तो मैंने पूरे दिन का कोटा पूरा किया. राइट फ्रॉम दैट पॉइंट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट नीड दिस गाय एवर अगेन इन माय लाइफ.
1: क्या बात,
3: नॉट दिस गाय.
1: बहुत सही भाई, बहुत सही. लंच खाए और उसके पैसे बंदे से दिलवाए. दिस रोशिफिकेशन इज नॉट सो मच फॉर यू एज इट इज फॉर योर बॉय. क्योंकि आई थिंक आपके लड़के को रोशिफिकेशन की जरूरत है कि क्या पटाखा मिल गया. वे टू गो मिस्ट्री कॉलर, आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कुछ सीक्रेट कन्फेशन है दैट यू वांट टू मेक, यू कैन टोटली हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: Oh, no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार मेरे ब्रेकअप को एग्जैक्टली 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन से मैंने अपने एक्स से बात नहीं की है. बट अब ना मुझे बहुत ज़ोर से एक्स आ रहा है. कैन आई प्लीज़ टेक्स्ट हिम? आई नो दैट आप मना करते हो कि इतनी जल्दी टेक्स्ट नहीं करते, बट मैं उसकी याद में अपनी नस काट लूंगी. क्या करूं मैं?
2: रोशी के डीएम से.
1: ओके, काम डाउन माय लिटिल डार्लिंग. ये मैसेज मुझे अक्षता ने लिखकर भेजा है. एंड अक्षता, आई गेट हाउ यू आर फीलिंग, बट दैट सेड, थोड़ा सा थाम्बा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक लिस्ट बनाते हैं ऑफ ऑल द रीजंस व्हाई यू ब्रोक अप विद दिस गाय, ठीक है? नंबर टू, मैं आपसे ज्यादा दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट 6 और दिन वेट कर लेते हैं. और उन 6 दिन में आई वॉन्ट यू टू जस्ट गेट ऑन टू दीज एप्स विच आर नॉट डेटिंग एप्स, लेकिन फ्रेंड्स एप्स. बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेटिंग एप्स हैं, इंक्लूडिंग बम्बल, विच हैव अ BFF वाला वो जो भी सर्च सिचुएशन होता है, वेर यू कैन एक्चुअली लुक फॉर अ बेस्ट फ्रेंड. सो ट्राई एंड फाइंड मोर पीपल टू हैंग आउट विद. तीसरी चीज, प्लीज 6 दिन के लिए ही सही पिक अप अ हॉबी. इट कुड बी बेकिंग अ केक, इट कुड बी मेकिंग ओरिगमी, इट कुड बी हारमोनिका सीख लो, इट डज नॉट मैटर. बट जो भी कर रहे हो, ऐसी चीजें करो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं की थी, सो दैट एवरी एक्सपीरियंस इज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड इट डज नॉट कैरी योर बॉयफ्रेंड स्टैम्प ऑन इट. अगर आज से 7वें दिन भी आपका उतना ही मन कर रहा होगा, जोर से एक्स आ रहा होगा कोट एंड कोट, जैसे अभी आ रहा है, देन यू सेंड मी योर नंबर एंड आई विल कॉल यू, ओके? एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विद इट. और अगर अक्षता की तरह आपकी भी जिंदगी में जोर से एक्स की याद आ रही है, आप कोई बहुत ही वाहियात हरकत करने वाले हो, डोंट, लेट्स टॉक अबाउट इट. सेंड मी योर नंबर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो फ्लेक्सिबल होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, दूसरे जो ढीठ होते हैं। और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लैटर कैटेगरी को बिलोंग करता था। पूरे रिलेशनशिप में जो भाई साहब 1.5 साल चलाए, माय ओनली थिंग वाज कि यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट भेजते, मुझे लगेगा कि तू सुबह उठते ही मेरे बारे में सोच रहा है और रात को सोने से पहले मेरे बारे में सोच रहा है, और अगर नहीं भी सोच रहा चैट जीपीटी को बोल दे यार एक बढ़िया सा टेक्स्ट बना देगा, मार मेरे मुंह पे कि ये ले रोशी, तेरे बारे में सुबह भी सोचा रात को भी सोचा। लेकिन भाई इस बंदे में इतनी मेहनत नहीं थी, ही वाज लाइक तुझे पता तो है, तू ही तो है मेरी बंदी, अब मैं सुबह जिम जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आई वाज लाइक और रात को क्या एक्सक्यूज है? ही इज लाइक मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, कब भेजूंगा तुझे टेक्स्ट। तो आई वाज लाइक फिर ठीक ही है, एक काम करते हैं, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं हो सकती। तो ही वाज लाइक क्यों? आई सेड मेरे पास टाइम नहीं है। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। अब आप मुझे बताओ कि आप मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह वो लेजी इंसान हो जिसे एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट किसी के मुंह पे मारने में इतनी दिक्कत होती है दैट यू वुड मच रादर बी सिंगल देन मेक दिस टाइनी बिट ऑफ एन एफर्ट। अगर हाँ तो मुझे आपसे डेफो बात करनी है, जो बातें मैं अपने एक्स से नहीं कर पाई वो मैं आपसे करूंगी, और वो करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉन लेजी होना पड़ेगा, अपना नंबर भेज दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कुछ चीजें आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बट दे आर ट्रू. इंडियन सोसाइटी में ना अगर एक बंदा कोई काम करे तो वो एक प्लेयर है. बंदी के अगर बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हों तो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा डूबियस है. इसके बारे में मैंने एक बहुत फनी रील भी बनाई है. चेक इट आउट ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अभी मेरे साथ लाइन पर पलक है. हाय पलक.
2: हाय.
1: क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में?
2: I just graduated.
1: Congratulations.
2: Thank you. And I have been in a relationship like from 10th standard.
1: Wow. Okay. Yeah. That's long, bro.
2: Yeah.
1: So, okay.
2: So, but the thing was that मुझे पहले से ही पता था कि okay हमारे हमारा कास्ट काफी अलग है एंड पेरेंट्स नहीं मानने वाले. मेरे को स्कूल टाइम में भी पापा ने मना कर दिया था कि ओके इफ दिस इज द गाय वी आर नॉट रेडी वी विल नॉट यू नो हम मानेंगे ही नहीं आगे जाके भी. मतलब मुझे कोई और पसंद ही नहीं है. सो द थिंग इज कि अभी मैंने उसको बोला है कि लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी तो हम साथ में, तो मुझे लगता है आगे भी हम साथ में ही रहेंगे. बट नाउ आई फील के आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अदर ऑप्शन यू नो. बट एट दी अदर हैंड आई थिंक नहीं यार मुझे फिर से किसी के साथ और स्टार्ट नहीं करना है. आई एम रियली कंफ्यूज व्हाट शुड आई डू. लाइक आई लव हिम. आई डोंट लव एनीवन एल्स. बट ऑन द अदर साइड आई थिंक आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एनीथिंग एल्स आफ्टर माय 10th यू नो.
1: यार ऑनेस्टली आई टोटली गेट इट. यू नो लाइक अगर मैं आपकी जगह होती और इफ आई वॉज एग्जैक्टली एट द प्लेस वेर यू आर मैं भी यही सोच रही होती. बट द ट्रूथ इज यू नो वॉट बेब, इफ यू मीट समवन एल्स जिसे देखकर आपको लगता है कि यार मेरे दिल की घंटियां बज रही हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. अगर अभी आप इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक लेकर बाहर की दुनिया चेक करके वापस आना चाहते हो, उसमें होगा ये दैट चांसेस आर यू माइट रियलाइज दैट दिस इज द गाय फॉर यू. But in that time, the guy might be so heartbroken ki wo kisi aur ke saath chala
2: jaye. Yeah, of course. Or I don't want to break his heart. Like I know him from my childhood.
1: Yeah. And I know that the temptation is there. Or ho sakta that aisa bhi ho jaye that one day you give in to temptation, ek hookup ho jaye, you end up feeling guilty and you decide ki mujhe iske baad aur kuch nahi karna kisi aur ke saath. Aisa bhi ho sakta hai. Lekin right now, I would suggest कि जानबूझ के इस रिलेशनशिप को स्टेक पर रखे एक और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है. जैसे जिंदगी चल रही है ना उसे चलते रहने दो. अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत एक्साइटिंग आएगा ना ऑटोमेटिक

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। प्यार झूठ

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतू राज। It's hot।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मुझे पता है कि आपने बहुत सुन लिया मेरे एक्सेस के बारे में, मेरा रोना, एंड ऑल्सो मेरा नया सबसे रीसेंट रोना कि इटली कितनी बोरिंग जगह है. बट एक और चीज़ तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी. जैसे ही मैं वापस इंडिया में लैंड करी, हम ड्राइव करके वापस घर जा रहे थे, एंड आई नोटिस सम्मान सड़क पे थूकते हुए भाई, और मुझे उस बंदे पे इतना प्यार आ रहा था. आई वॉज लाइक, वाह, तेरी थूक की पीक में रेड कलर है, जो इटली में मैंने कम ही देखा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नहीं ही देखा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इंडिया जैसी प्यारी जगह तो दुनिया में कहीं नहीं है यार. हर जगह जहाँ देखो कलर है, जहाँ देखो लोग गाने गा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पान खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस पर चर्चा भी किए जा रहे हैं. और अगर टॉकिंग ऑफ चर्चा, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करना चाहते हैं चचा, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर एक बार चीट कर चुकी है और मैं फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि हमारे रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट है रोशी, वो वापस आ जाए?
2: रोशी के डीएम से
1: साहिल ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा, एंड साहिल, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट जब एक रिलेशनशिप में यू फाइंड आउट दैट योर पार्टनर हैज चीटेड ऑन यू, वो भले ही एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन क्यों ना हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन ट्रस्ट आफ्टर दैट. लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर भी इसके बावजूद यू गाइज आर ऑन द सेम टीम? एक तो ये चीज़, दूसरी ये, क्या आप विलिंग टू फॉरगिव एंड मूव ऑन हो या नहीं? क्योंकि अगर आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और आप सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं द बिटरनेस विल कम बैक लेटर. सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या फॉरगिवनेस आपके दिल और दिमाग में हो चुकी है या नहीं. तीसरी चीज़, जब आपकी गर्लफ्रेंड ये कहती है दैट वो एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन था, ये कभी फिर से नहीं होगा, हाउ सिंसेयर इज शी? आपको कितना यकीन है कि वो जो कह रही है वो अपने सच्चे दिल से कह रही है? चौथी चीज, कई बार ना जिंदगी में, ये मेरी मम्मी कहती है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जाने देना चाहिए. हो गया हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां सब करते हैं, बट इट्स वाइजर टू लुक अहेड देन टू लुक बिहाइंड एंड फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: At the age of 28, आपने अभी तक किसी को ये नहीं बताया that you still sleep at night with your stuffed toys.
2: The secret box.
1: But honestly, this is a jolly cute confession. और अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई cute confession है, why don't you hit me up on Insta या FB? We'll talk about it. मेरा नाम है Mirchi Roshi. नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. So hit me up on the Gram या Facebook. We'll get talking. और मेरे साथ line पर अभी है मेरी mystery caller. Hi, babe.
3: Hi, Roshi. How are you?
1: I am very good. How are you? You sound so cute. Like इतने छोटे से like you know young and precious sound करते हो like a tiny little flower. ऐसे tiny को क्या कन्फेशन होगी?
3: रोशी, मेरा कन्फेशन तो ये है कि आई मेट अ गाय ऑन दिस डेटिंग ऐप एंड ही वाज सो हैंडसम एंड सो क्यूट एट फर्स्ट साइट एंड ही स्वाइप्ड राइट फॉर मी एंड देन आफ्टर वी डिसाइडेड टू गो फॉर लंच.
1: ठीक है.
3: एंड मीनवाइल ऑन दैट वी वर ऑन लंच एंड आई सॉ हिम दैट ही वाज स्टिल स्वाइपिंग लेफ्ट और राइट ऑन दैट डेटिंग
1: ऐप
3: राइट इन फ्रंट ऑफ मी. And that was so unusual, so shocking to me. I was right there. I decided ki ab to tu bacha gaya. Phone teri band vajji ke vajji. So maine socha main to yahan pe pura lunch kha kar jaungi and paise bhi nahi dungi. So this is what happened. He had to pay all for that lunch and I think उस दिन तो मैंने पूरे दिन का कोटा पूरा किया. राइट फ्रॉम दैट पॉइंट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट नीड दिस गाय एवर अगेन इन माय लाइफ.
1: क्या बात,
3: नॉट दिस गाय.
1: बहुत सही भाई, बहुत सही. लंच खाए और उसके पैसे बंदे से दिलवाए. दिस रोशिफिकेशन इज नॉट सो मच फॉर यू एज इट इज फॉर योर बॉय.
4: You've been roshified.
1: क्योंकि आई थिंक कि आपके लड़के को नोटिफिकेशन की जरूरत है कि क्या पटाखा मिल गया. वे टू गो मिस्ट्री कॉलर, आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कुछ सीक्रेट कन्फेशन है दैट यू वांट टू मेक, यू कैन टोटली हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी. मेरा नाम है Mirchi Roshi. नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो Mirchi.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल तोहार है। हम तोहका ना ही बोला है जाके थिएटर में अपनी फैमिली

0: वह इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़िया पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगा कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीत राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतू राज। Only on Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने रिलेशनशिप में पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से झगड़ा कभी मत करना. सिंपली बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो पॉलिटिकल पार्टीज आपको आपके टूटे हुए दिल में मदद करने नहीं आएंगी. पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिक्स होता है और रिलेशनशिप्स का काम प्यार करना होता है. इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन कभी मत लाना. और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि माय एक्स एंड आई, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा एक बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट हुआ जिसमें वी बोथ हैड डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन उसकी वजह से हमारा ऐसा झगड़ा हुआ कि अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. और इसमें लूजर पता है कौन है? वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मैं. एंड जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम टेलिंग यू अपने साथ ये मत करना. लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया एंड यू वांट अ वे टू फिक्स इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. और मेरा एक बिलीफ है दुनिया में कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा डरा दूं। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। डराने से मेरा मतलब है कि हॉरर फिल्म की बात करूं। वेल, ये वो टाइम था जब हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, और जब बनती भी थी तो वो हॉरर का मिस्ट्री ज़्यादा हो जाती थी। दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो इनिशियल ईयर्स में आई और जिसने राम से ब्रदर्स का करियर एस्टेब्लिश किया। राम से ब्रदर्स हु वर लेटर नोन टू मेक हॉरर फिल्म्स ओनली। वेल, उन्होंने बनाई 1984 की ये फिल्म जिसका नाम था पुराना मंदिर। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें मुनीश बहल थे, पुनीत सर थे, आरती गुप्ता थी, एक्ट्रेस थी। वेल, इस फिल्म में ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई, सब बताऊंगे ना जल्दी किस बात की। अभी अभी तो आई हूँ, अभी आगे आगे सुनो होता है क्या। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। तो मिर्ची पे जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ, आज का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

श्याम और तुलसी राम से की ये पहली हॉरर फिल्म थी और उसके बाद इस फिल्म के हिट होने के बाद रादर उनकी हॉरर फिल्मों की लाइनें लग गई। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ 1984 की फिल्म आई पुराना मंदिर, जिसने बॉक्स ऑफिस पे लोगों को इतना डराया कि लोग ना बार बार डरने पहुंच रहे थे। मेरा मतलब है कि द मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। एंड जब उन्होंने ये फिल्म शूट की ना, तो इसमें आप देखोगे एक हॉन्टेड हवेली है। ये हॉन्टेड हवेली जो दिखाई जाती है वो एक नवाब पैलेस है जो कि मुरूद जंजीरा, विच इज इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र, वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे रामसे ब्रदर्स ने अपनी ये पहली हॉरर फिल्म शूट की थी। उसके बाद जो इतनी सारी उन्होंने हॉरर फिल्में बनाई ना, सब में उन्होंने इसी पैलेस को लिया था। वेल, उनको लगता था ये उनका लकी चार्म भी है और उनको लगता था कि हॉरर दिखाने के लिए ये पैलेस एकदम एप्ट है। पुरानी जीन्स पे ना इसी फिल्म की ढेर सारी बातें, हॉरर बातें पता करके आई हूँ। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ जब ये फिल्म को शूट किया जा रहा था। वेल, इस हादसे के बाद सेट पे काफी लोग डर गए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जैसा कि मैंने कहा, आज मुझे आपको थोड़ा डराने का मन कर रहा है। मेरा मतलब है आज हॉरर फिल्म की बात करने का मन कर रहा है। सो पुराना मंदिर की बात हो रही है जिसमें थे मुनीश बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर, और इसमें थे भाई एक और एक्टर जिनका नाम था अजय अग्रवाल। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। तो एक सीन होता है जिसमें अजय अग्रवाल एक कॉफिन में बंद है, और फिर जब वो कॉफिन वापस निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, तो वो ऐसे उठते हैं कि उनको ना सबको डराना है सडनली। हाँ, कॉफिन खुलते ही बस उठ जाना और डराना है। अब हुआ ये कि ये कॉफिन एक्चुअली में बहुत देर तक खुला ही नहीं, एंड इट जस्ट हैपेंड। किसी को नहीं पता आज तक कि ऐसा क्यों हुआ। अजय अग्रवाल, जिनको कॉफिन से निकलना था और डराना था, वो ये सीन कर ही नहीं पा रहे थे। बार बार टेक वन टू थ्री, टेक वन टू थ्री रामसे ब्रदर्स कर रहे थे, बट ही डिड नॉट गेट आउट ऑफ द कॉफिन। जब देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चला कॉफिन लॉक हो गया है। और उसके बाद एक घंटा लगा क्रू को कॉफिन तोड़ के उनको बाहर निकालने में। अब इस सीन के बाद जो हड़कंप मचा ऑन द सेट, क्या ये सीन फिर से कंप्लीट हुआ? ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी। वापस आओ कुछ गानों के उस पार। दिस इज श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कास्ट एंड क्रू इतना डर गई थी इस सीन के बाद कि आधे लोग एक्चुअली लेफ्ट पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ. एंड आज मैं बात कर रही हूँ हॉरर फिल्म 1984 की पुराना मंदिर, जो रामसी ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म थी. इसमें थे मोनीश बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर. और ना ये फिल्म में एक ऐसा सीन हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई एक्चुअली में डर गया था. आधा कास्ट लेफ्ट एंड वेंट बैक. क्या हुआ था बताती हूँ. ये कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं आधी छोड़ के गई थी. सो अजय अग्रवाल एक एक्टर, उनको क्या करना था कि उन्हें एक कॉफिन में बंद करना था. बंद करने के बाद सीन ऐसा होना था कि कॉफिन बाहर निकलेगा और वो एकदम से निकलेंगे और लोगों को डरा देंगे. अब भाई रामसे ब्रदर्स ने 2-3 टेक्स दिए, लेकिन अजय अग्रवाल कॉफिन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. सडनली सबने रियलाइज किया कि क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो देखा गया कि कॉफिन अपने आप बंद हो गया है. और फिर करीब 1 घंटा लगा वो कॉफिन तोड़ करके अजय अग्रवाल को बाहर निकालने में. ये चीज देख करके ना कास्ट एंड क्रू में एकदम, जिसे कहते हैं, डर का माहौल हो गया था. हाफ ऑफ देम एक्चुअली लेफ्ट एंड वेंट. एंड अजय अग्रवाल वापस कॉफिन में जा करके ये सीन शूट करने से बिल्कुल मना करने लगे. वो तो रामसे ब्रदर्स ने किसी तरह उनको समझाया कि इसमें बस कैमरा लगा है, ये सिर्फ एक सीन है एंड ऑल ऑफ दैट. वो गलती से बंद हो गया होगा, वो कुछ प्रेशर से बंद हो गया होगा, ये सब समझाया गया. तो किसी तरह ये सीन तो शूट हुआ, लेकिन आधे ही क्रू के साथ शूट हुआ था. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. इसी फिल्म की बातें और भी जारी रहेंगी. कहीं भी मत जाना, गाने सुनकर

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थिएटर में ये मूवी एकदम अमिताभ बच्चन जी की मूवी के बगल में लगी थी और तब किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चन साहब की मूवी में कम लोग जाएंगे और इस हॉरर फिल्म में पहली बार इतने लोग आएंगे। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज एक हॉरर फिल्म की बात हो रही है, 1984 की पुराना मंदिर, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, ये फिल्म जब रिलीज हुई ना तो बच्चन साहब की लावारिस भी रिलीज हुई और दिल्ली का एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स थे एट दैट टाइम, तो ये उस थिएटर में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई थी। मतलब एक हॉल में लगी हुई थी बच्चन साहब की लावारिस और दूसरे हॉल में लगी हुई थी पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि उस टाइम पे लोग लावारिस से ज्यादा पुराना मंदिर में देखे गए थे? यस, दैट एक्चुअली हैपेंड। वेल, रामसे ब्रदर्स की ये पहली हॉरर फिल्म थी। आज इसी की बातें चल रही हैं, श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये ना एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी इन द हॉरर जॉनर ऑफ इंडिया, पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। और जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है पुराना मंदिर। इट वॉज अ ह्यूज हिट, मतलब इतनी बड़ी हिट थी कि उसी टाइम पे बच्चन साहब की लावारिस रिलीज हुई थी। और दिल्ली का एक हॉल था जहाँ पे ना दो हॉल्स एक साथ थे, एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स एक साथ थे, एक में लावारिस लगी हुई थी और एक में पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि लावारिस से कहीं ज़्यादा टिकट्स भाई पुराना मंदिर के सेल हुए थे। वेल, इस फिल्म ने ना बहुत एनकरेज किया रामसे ब्रदर्स को टू मेक मोर हॉरर फिल्म्स। इसके बाद से तो उन्होंने हॉरर फिल्मों की एकदम लड़ी झड़ी लगा दी, डाक बंगला बनाया, वीराना बनाया और तहखाना बनाया एंड सो मैनी ऑफ देम। वेल, इस फिल्म में ना एक और बड़ी खास बात थी, क्या थी वो अभी बताऊंगी आपको। ये बीच में आपके और मेरे ना गाने आते हैं जिसको सुनने के लिए आप और मैं यहाँ रोज आते हैं, तो इनको सुन करके वापस आओ। आई विल लेट यू नो, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: राजा उस टाइम पे हीरो फेमस होता था, साथ साथ विलेन भी उतना ही पॉपुलर हो जाता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, जैसे कि गब्बर, मतलब ये गब्बर नाम इतना पॉपुलर हुआ कि भाई सिप्पी साहब को ना एक और छोटी सी फिल्म बनानी पड़ी, नेम्ड ओनली गब्बर। एंड ऐसा ही कुछ हुआ रामसे ब्रदर्स के साथ, जब उन्होंने आज जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पहली हॉरर फिल्म पुराना मंदिर 1984 में बनाई। तो इस फिल्म में जो डीमन था, जो भूत था, उसका नाम था सामरी। एंड ये सामरी घर घर में फेमस हो गया था, लोग डराने के लिए एक दूसरे को सामरी का नाम लेते थे। एंड इमेजिन द नेम गॉट सो पॉपुलर कि राइट आफ्टर दिस फिल्म व्हेन इट गॉट हिट 1984 में, 1985 में रामसे ब्रदर्स ने एक और फिल्म बनाई, उसका नाम रखा सामरी 3D, जो भी काफी हिट हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज इसी फिल्म की बातें हो रही है, सो कम राइट बैक।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: मुझसे प्यार है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म तो हिट हो गई लेकिन फिल्म के हीरो इससे काफी अपसेट हुए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रामसे ब्रदर्स की फर्स्ट सुपर हिट हॉरर फिल्म। वेल पुराना मंदिर 1984 की ये फिल्म थी जिसमें मुनीश बहल थे, और मुनीश बहल की जब ये फिल्म रिलीज हुई उन्होंने फिल्म मेकर्स के बारे में बहुत कुछ कहा, रामसे ब्रदर्स के लिए बहुत कुछ कहा। ही सेड कि मुझे लगा था कि ये फिल्म जो है हॉरर होने के बावजूद बी ग्रेट फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इट वॉज ऑल अबाउट हॉरर, इट वॉज ऑल अबाउट यू नो द डीमन, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी जिसमें हीरो का कोई खास लेना देना हुआ नहीं। उनकी मम्मी नूतन ने भी यही बात कही और फिल्म मैगजीन्स ने इंटरव्यू बहुत छापा, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद मुनीश बहल को जनरली सब बी ग्रेड फिल्म्स आने लगी थी, और उस टाइम पे हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड की श्रेणी में रखा जा

जाता था। वेल, मुझे थोड़ा अजीब लगा जब मैं ये पढ़ रही थी, क्योंकि जब आप फिल्म करने लगते हो तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाता है कि ये जो फिल्म है ये कौन से जॉनर की है, ये जो फिल्म है इसमें मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग दिखेगा, कितना वीक दिखेगा। एंड अगर फिल्म हिट होने के बावजूद आप ये बोलें कि मुझे पता नहीं चला कि ये फिल्म कैसे पोर्ट्रे होगी, ऑल ऑफ दैट, तो फिर यार मतलब नहीं, ये बेईमानी है। क्या कहते हो आप? वेल, डू लेट मी नो फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA YA श्रेया विद लव। Only on Mirchi, it's hot.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

श्याम राम से और तुलसी राम से के जितनी हॉरर फिल्म्स थी उनमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक सेम होता था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी। आई मीन हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज बार बार करो तो उसका रिकॉल बढ़ता है, टॉप ऑफ द माइंड प्रायोरिटी सेट होती है, ऑल ऑफ दैट। एंड इमेजिन इन्होंने तो सिर्फ म्यूजिक से उस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया था। मतलब रामसे ब्रदर्स की म्यूजिक जैसे ही लोग सुनते थे ना उनकी फिल्मों की, तो उन्हें लग जाता था ओ हो हॉरर फिल्म। एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि आपको याद है जी पे आया करता था द जी हॉरर शो, उसमें भी रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर म्यूजिक जो थी ना उसको यूज किया जाता था बैकग्राउंड स्कोर की तरह। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज उनकी पहली हिट हॉरर फिल्म, वेल 1984 में आई पुराना मंदिर, इसकी बातें चल रही हैं। और भी बातें हैं बताऊंगी आपको, बीच में आपके में और मेरे गाने आ रहे हैं तो उनको सुन करके यहीं वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनिरुद्ध अग्रवाल जो कि सामिरी के नाम से फेमस हो गए थे इंडिया के घर घर में, यानी उस कैरेक्टर नेम से जिसमें भूत दिखाया गया था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेल रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म 1984 में आई, इसका नाम था पुराना मंदिर। वेल इसमें सामिरी के कैरेक्टर से अनिरुद्ध अग्रवाल वाज वेरी वेरी पॉपुलर और कहते हैं कि मूवी पूरी कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ जो डीमन के सीन्स थे यानी भूत के जो सीन्स थे ना उनको छोड़ा गया था क्योंकि एक एप्ट कैरेक्टर मिली नहीं रहा था रामसे ब्रदर्स को। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने अनिरुद्ध अग्रवाल को स्पॉट किया और उनको ना रामसे ब्रदर्स के ऑफिस का एड्रेस दिया। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे कहते हैं कि श्याम रामसे तो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए कि हाँ मुझे सामरी मिल गया, मुझे सामरी मिल गया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अगर फिल्म में सिर्फ टाइट सीन्स होते ऑफ हॉरर एंड भूत एंड ऑल ऑफ दैट, तो शायद फिल्म में कहीं कॉमेडी रह जाती, और ये बात ना रामसे ब्रदर्स ने अच्छे से समझ ली थी। इसीलिए फिल्म में लाइटर मोमेंट्स देने के लिए राजेंद्र नाथ, ललिता पवार और जगदीप जी को लाया गया था। उनमें ना उनकी कॉमेडी में एकदम शोले, 1975 में शोले आई थी, मतलब 10 साल हो चुके थे शोले को आए हुए, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब वही कॉमिक टाइमिंग, वही कॉमिक सीन्स, थोड़े बहुत वही डायलॉग्स, वही ट्रीटमेंट ऑफ कॉमेडी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज जिस फिल्म की बात हो रही थी वो रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म की, स्ट्रिंग ऑफ हॉरर फिल्म्स की पहली हिट हॉरर फिल्म थी। इट वॉज पुराना मंदिर 1984 में। ये फिल्म हिट होने के बाद रामसे ब्रदर्स ने इतनी सारी हिट फिल्में बनाई विच वर यू नो ऑफ द सेम हॉरर जॉनरा, जैसे कि तहखाना बनाई, डाक बंगला बनाई, वीराना बनाई, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा अगर कोई हिट हुई वो थी पुराना मंदिर। आज इसी फिल्म की बातें चल रही है श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी आपको तो पता ही क्या करना होगा, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना होगा और मेरे साथ हाईवे तक चलना होगा। श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी आपको तो पता ही क्या करना होगा, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना होगा और मेरे साथ हाईवे तक चलना होगा।

0: है तो सच में ये गाना याद आता है। लता जी ने गाना गाया एंड ये गाना ना उन सभी लोगों के लिए मेरी तरह जो ऐसे लम्हे आजकल ढूंढते हैं।
1: फिर वही फुर्सत के
0: है ना, आई मीन और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत टीवी देखो, खाओ पियो सो जाओ फुर्सत के रात दिन। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, वन टू वन बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव। ऑन दैट नोट गुड नाइट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल तोहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: की प्यास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर?
2: फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि लाइफ इतनी मुश्किल क्यों लगती है जबकि दूसरों की जिंदगी इतनी आसान नजर आती है। बेसिकली द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड।
3: पहले तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स होती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ज्यादा मुश्किल जो चीज है वो आपका मन आपको हर्ट क्रिएट कर रहा है। सारा समय दूसरे की लाइफ देख रहे हैं, वो भी रियलिटी कहाँ दिखाई देती है? हम मेजोरिटी लोगों की लाइफ देखते कहाँ पर है? सोशल मीडिया पे
2: या जो बाहर दिखता है।
3: ज्यादातर कंपेरिजन सोशल मीडिया पर आजकल होने लगा है। सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए बना हुआ है, वो ऐसा फील कराता है कि कनेक्शन के लिए, पर वो कनेक्शन के लिए है नहीं।
2: सही बात।
3: जितने लोग हमारे वहाँ पे फॉलोअर्स आते हैं, वो कोई कनेक्शन नहीं है। सोशल मीडिया से हर कोई वैलिडेशन ले रहा है। आप नोट करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे, जो बहुत बहुत कंटेंट होंगे ना अपनी लाइफ से, वो पोस्ट ही नहीं करते।
2: हाँ, बिल्कुल।
3: पता नहीं आपने नोट किया है कि नहीं किया है, वो बहुत एक्टिव होते ही नहीं है। और अगर उन्होंने कभी पोस्ट कर भी दिया तो वो करके भूल जाते हैं। लेकिन जिनको वैलिडेशन चाहिए, जिनको थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए, वो थोड़े थोड़े समय पर पोस्ट करते रहेंगे। ड्रेस क्या पहना, खाना क्या खाया, घूमने कहाँ गए। अब हम उनकी कई बार जो रियलिटी है लाइफ की वो भी नहीं पता, जो रियल लाइफ है उसमें देखते जा रहे हैं और देख देख करके कंपेयर करते हैं। और मन ऐसा कहता है कि उनके लाइफ में सब बहुत अच्छा है, वो बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत घूम रहे हैं, तो अंदर में जेलसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जेलसी आपकी लाइफ को ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है, वो जेलसी आपकी सोल पावर को डिप्लीट कर रही है। और इसीलिए आपके जीवन के छोटे छोटे पेपर भी आपको पहाड़ लग रहे होंगे। बाकी तो कोई का जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कोई बात नहीं आए। हर एक के जीवन में छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आती है, पर छोटी छोटी बातें तो होती हैं। आप जितना अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाएंगे, उतना वो बातें आपको छोटी लगेंगे। एक ही चीज आप कितनी बार देखेंगे, सीन एक ही होता है। एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट डिले हो गई, 200 पैसेंजर है, सब एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं।
2: कुछ बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं।
3: और कई लोगों को तो जो चीख रहे होते हैं ना, उनको इस बात का ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आराम से क्यों बैठे हैं।
2: हाँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोले, हम ही लड़े जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ,
3: तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो वन सीन, वन सिचुएशन, 200 पीपल डिफरेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि हर एक की रेजिलियंस अलग है। जो जितना पावरफुल है वो अपने पर मेहनत करता है, जो जितना वीक है वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी रेजिलियंस को बढ़ाएं और लाइफ को एंजॉय करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो पल फिलहाल है उसे प्रायोरिटी दें। बीते कल को याद करके आज को जाया ना करें। आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: स्टीव जॉब्स जो एप्पल के कोफाउंडर रहे हैं, उन्होंने कमाल की बात कही थी कि योर टाइम इज वेरी लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ।
4: दिस इज सो ब्यूटीफुल,
3: क्योंकि दूसरों की लाइफ परफेक्ट ही लगती है। लेकिन सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां या प्रॉब्लम्स होती ही हैं।
4: और अगर परफेक्ट है भी, पहले तो होते नहीं है, और अगर परफेक्ट है भी तो खुश होना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल,
4: उनके लिए हम खुश हों। और दूसरा देखें, इतना हम चैलेंजेस से क्यों घबराते हैं? सबसे ज्यादा विजडम, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी में से ही आता है।
3: बिल्कुल, हमेशा
4: हर एक के जीवन का ये अनुभव है। और आप किसी को कहेंगे अभी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उस चीज ने मुझे बेहतर बनाया, उस चीज ने मुझे, यू नो, समटाइम्स आई मीट पीपल हु गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, सर वो स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, एंड देन आई आस्क देम डू यू वांट टू गो बैक, एंड देन दे पॉज एंड से नहीं, वापस तो नहीं जाना है।
3: सही बात।
4: तो जो था पास वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आज है, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, यही मोमेंट रियल है, उसमें आप बेस्ट अपना दें, लाइफ को एंजॉय करें। हमारी सोच दुख देती है,
3: सही बात,
4: बातें दुख नहीं देती हैं, लेकिन उन बातों के बारे में सोच सोच करके हम दुखी होते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आइए एक फकीर की छोटी सी कहानी और उसके पीछे छुपी सीख जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक कहानी है जिसमें एक फकीर होता है और वो फकीर ऐसा माना जाता है सारे गांव में कि उसका भगवान से बहुत अच्छा रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है।
4: अच्छा।
3: तो एक बहुत धनवान व्यक्ति उसके पास आकर के कहता है कि सुना है आपके तो भगवान से डायरेक्ट मुलाकात होती है।
4: हाँ।
3: तो अगली बार जब आप उससे मिले, रब से मिले, आपकी बात हो, तो जरूर उसको ये कहना कि मेरे पास उसका दिया सब कुछ है।
4: अच्छा।
3: मेरे पास हर चीज है, इसीलिए वो मुझे और कुछ नहीं दे, मेरे पास उसका दिया सब कुछ है।
4: अरे।
3: तो फकीर ने कहा ठीक है, मैं आपकी जो बात है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो उस तक पहुंचा दूंगा। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां पर उसको कोई बहुत गरीब मिला।
4: हाँ।
3: जिसके पास एक फटी चादर ही उसने ओढ़ रखी थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा सुना है फकीर को कि आपका बड़ा अच्छा परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, आप उस तक पहुंचा देना। तो उसने कहा कि तुम भगवान को कहना कि कुछ तो मुझे दे दे, देखो ना मेरे पास ना खाने के लिए है ना पहनने के लिए कुछ है, तो आप उसको कहना कुछ तो मुझे दे दे। खैर जब फकीर की वार्तालाप हुई परमात्मा से, उसने दोनों की जो बात थी वो कही, तो परमात्मा ने कहा अच्छा जो धनवान है उसको कह दो कि वो शुक्राना करना बंद कर दे।
4: अच्छा।
3: वो बहुत शुक्रिया करता है हर चीज का कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, वो शुक्रिया करना बंद कर दे तो उसको मिलना बंद हो जाएगा।
4: हाँ।
3: और उस गरीब व्यक्ति को कहो कि वो शुक्रिया करना शुरू कर दे
4: तो उसको
3: सब कुछ मिल जाएगा।
4: क्या बात है।
3: तो वापस आकर के जब उसने ये बात धनवान व्यक्ति को कही तो उसने कहा ये तो नहीं हो सकता।
4: सही बात।
3: मैं शुक्राना करना तो बंद कर ही नहीं सकता, जिस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया मैं उसका शुक्राना करना बंद नहीं कर सकता। तो उसने कहा अगर तुम शुक्राना करना बंद नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ अच्छा होना भी बंद नहीं हो सकता।
4: अरे वाह, क्या बात।
3: और ही अच्छा अच्छा होता जाएगा। और फिर जब उस गरीब को कहा कि तुम शुक्राना करना शुरू करो तो उसने कहा मैं किस चीज का शुक्राना करूं,
4: मेरे पास कुछ
3: है क्या, मेरे पास पहले वो मालिक मुझे दे तो सही, तो मैं उसका शुक्र करूं, ना मेरे पास पहनने के लिए ना खाने के लिए, मैं किस चीज का शुक्र करूं। और फिर ऐसी एक हवा सी आई कि जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी फटी हुई वो भी उड़ के चली गई। तो भाव कहने का ये है कि हमारा जीवन हमारी सोच से बनता है।
4: क्या बात।
3: अगर हमारी सोच में शुक्राना है, हमारी सोच में धन्यवाद है, हम कंटेंट हैं, तो अच्छा अच्छा होता चला जाता है। लेकिन हमारी सोच में कंपैरिजन है, हमारी सोच में ब्लेम है, हमारी सोच में कंप्लेन है, हमारी सोच संकुचित है, तो फिर हमारे साथ वैसा ही जीवन में होता जाता है। इसलिए अच्छा सोचें और उस परमात्मा का शुक्रिया करें।
4: क्या बात, बहुत ब्यूटीफुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है। ऑफिस में मैंने एक कॉलीग के बारे में अपनी ओपिनियन किसी से शेयर की और वो बात उस तक पहुँच गयी। अब पूरी टीम का बिहेवियर बदल गया है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ?
3: पहली बात तो इस सिचुएशन ने हमें यह सिखाया कि अगर आपके ओपिनियन किसी के बारे में है तो डायरेक्ट उनको कहना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: ओपिनियन ना हो वो नहीं है, लेकिन जिसके बारे में है ग्रेस और डिग्निटी से जाकर के उनसे बात कीजिए। वरना ये हमें लगता है कि हमने किसी को बताया और वो आगे किसी को नहीं बताएंगे। फिर कभी कभी वो भी किसी एक को बताता है और कहता है कि बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ,
2: किसी से ना कहना।
3: एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि रूम में वो बात
2: सबको पता होती है।
3: तो इसीलिए अगर कोई बात है, इसीलिए उसको गॉसिप फिर कहते हैं ना। तो कोई बात है, पहली चीज आप डायरेक्ट उनको कहिए और इस जो ये पूरा सीन है इसको लर्निंग की तरह ले, दोबारा कभी ऐसे नहीं करें। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति के पास बात पहुंचती है ना, उसमें भावना बदल जाती है
2: और उसका वर्जन भी बदल जाता है। आपने बोला कुछ और ही होगा और पहुंचा उनके पास कुछ और ही,
3: क्योंकि हर एक का वर्जन मिक्स होता जाता है। हर एक के इंटेंट, हर एक की फीलिंग, हर एक का पर्सपेक्टिव उसमें, और जब तक वो चीज उन तक पहुंचती है तब तक वो पूरी की पूरी चेंज हो गई होती है।
2: तो ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी टीम का बिहेवियर भी बदल चुका है।
3: मतलब गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। लाइफ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपने रियलाइज किया, आपने उस सीन से सीख लिया। अब अगर आपका व्यवहार सही होगा, इट विल टेक टाइम। कर्म से ही हम ट्रस्ट लूज करते हैं, कर्म से ही हम ट्रस्ट विन करते हैं। तो ये जो थोड़ा समय है इसको आप एक तरह से लर्निंग की तरह आपने लिया, लेकिन अगर किसी का बिहेवियर ठीक भी नहीं है, आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें, बेस्ट अफेक्ट नहीं हो। अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप अपने को कहें हाँ मेरी मिस्टेक थी ना, इसके कारण उनका मन थोड़े समय के लिए ऐसा है, बट आप अपने बिहेवियर को बेस्ट रखें, चाहे वो रिस्पेक्ट के लिए है, चाहे वो बात करने में काइंडनेस है। एवरीथिंग जो गॉसिप होती है ना, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। उसका जो पार्ट होता है वो बहुत टेम्पररी होता है। धीरे धीरे जो आपकी नेचर अभी है, जो आपका व्यवहार है, उसकी छाप पड़ती जाएंगी, पीछे का भूल जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पर अटेंशन नहीं दिया और सबकी एनर्जी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और आप और नेगेटिव हो गए और आपका व्यवहार और गलत हो गया, तो वो चीज विशेष साइकिल बन जाएगी।
2: और वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ही कैन ऑल्सो गो अप टू और शी कैन, जिन्होंने भी लिखा है, जिनके बारे में बात कही थी, उनको भी जाके अपोलोजाइज तो कर ही सकते हैं।
3: एब्सोल्युटली अपोलोजाइज भी कर सकते हैं और अपनी बात जो ऑनेस्टी से है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमेशा हेल्प करता है। जो भी अंदर में नेगेटिविटी होती है उसको खत्म कर देता है। पर एक परसेंट ये भी हो सकता है कि इतने सारे वर्जन सुनने के बाद वो व्यक्ति ऑलरेडी अपना एक पर्सपेक्टिव फॉर्म कर चुका है। तो अब जब आप जाकर के कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरवाजे कई बार बंद हो चुके होते हैं। तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: जो हमारा पार्ट है वो हमें फिर भी प्ले करना चाहिए, बट हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनको भी हील होने के लिए।
2: सही बात।
3: अगर बहुत वर्जन से उन्होंने हर्ट क्रिएट कर लिया है और अब हम कहें मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया, बिल्कुल ठीक हो जाओ, कई बार ऐसा नहीं होता। सो योर कंटिन्यूस रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट एंड नाउ राइट बिहेवियर विल ऑल्सो हेल्प इन देयर हीलिंग, पर थोड़ा इसमें समय जाने दें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, एक अनोनमस सवाल आया है कि अगर बुरे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है तो अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता?
4: कर्मों का फल मिलता है लेकिन इसी जन्म में मिलता है ऐसा नहीं है। कर्म शरीर नहीं करता है। जब हम एक जन्म की बात करते हैं तो बेसिकली हम बर्थ और डेथ जो शरीर का है, लेकिन कर्म कभी शरीर ने किया ही नहीं है।
3: सही बात है।
4: कर्म शरीर के द्वारा होता है लेकिन कराते आत्मा है। आप आत्मा बोले, सोल बोले, बींग बोले, हम ह्यूमन बींग कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, इसीलिए टाइटल भी सोल को मिलता है।
3: अच्छा,
4: आप पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते
3: हैं। सही बात। हाँ,
4: आप पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं।
3: सही।
4: और इसलिए जब शरीर छूटता है तो आप अपना कार्मिक अकाउंट साथ में लेकर जाते हैं और उसी अनुसार आपका अगला जन्म भी होता है। इसीलिए किसी का जन्म में हम देखते हैं गोल्डन स्पून एंड माउथ, किसी को खाने को भी नहीं है, किसी का राजा के घर में जन्म हो रहा है, किसी को रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। तो वो कर्मों का हिसाब किताब साथ में जाता है। तो पहले तो ये बात ही रॉन्ग है कि वो उसी जन्म में मिलेगा, लेकिन आएंगा जरूर रिटर्न।
3: सही बात।
4: चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, कर्म का कॉन्सिक्वेंस होता ही है। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता, अच्छा भी है बुरा भी है। कितना कुछ अच्छे को तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म होना, अच्छा शरीर मिलना, हेल्दी शरीर मिलना, चल सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे भी तो है ना जो जन्म से देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छा परिवार, अच्छी एजुकेशन, ये सब भी तो क्या है, कर्मों का ही तो फल है ना। तो इसलिए वो भी एक लंबी लिस्ट है।
3: बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि आस्क फॉर नथिंग, वॉन्ट नथिंग इन रिटर्न, गिव वॉट यू हैव, इट विल कम बैक टू यू, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू नॉट थिंक ऑफ इट राइट नाउ। वही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन कुछ मांगो मत, कुछ वापस मत चाहो कि मुझे मिले, और जो है वो देते जाओ और वो वापस आ जाएगा आपको, लेकिन उसके बारे में इस वक्त मत सोचो, वो अपना एक प्रोसेस है, वो होता रहेगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक वार्तालाप हमें क्या सिखाती है, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अर्जुन और कृष्ण कहीं पर जा रहे थे
4: जी,
3: और वहाँ पर उन्होंने एक भिखारी को देखा।
4: हाँ।
3: तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा, अरे तुमने इतनी सुंदर दुनिया बनाई फिर उसमें ये भिखारी क्यों बनाया? तो फिर उसने भिखारी को जाकर के पूछा कि तुम क्या हो गया? तो फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, जीवन में दुख की घड़ी सबके सामने आती है। उसने उसको कुछ सोने की अशर्फियां दे दी।
4: अच्छा,
3: वो आगे चले गए, वो भिखारी भी चला गया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई चोर आए और उसकी जो वो
4: अशर्फियां
3: थी उसको लेकर के चले गए। अगले दिन फिर वो भीख मांग रहा था, फिर उन्होंने देखा कृष्ण और अर्जुन ने। अर्जुन ने फिर कहा, अरे क्या हो गया, कल ही तो तुमको दी थी। उसने कहा, वो चोर आए मारपीट करके ले गए। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जीवन में ऐसा होता रहता है। फिर उसको एक हीरा दे दिया कि कोई बात नहीं, अपना जीवन अच्छे से जी लो। वो फिर बहुत खुश हो गया और बहुत हीरे को संभाल करके घर में गया, और घर में वो पड़े थे जो घड़ा होता है ना जिसमें पानी भरते हैं, तो एक घड़े में डाल दिया कि अब तो उसको कोई नहीं चुरा सकता। तो अगले दिन जब उसकी पत्नी उठी, वो पानी भरने के लिए जा रही थी, अब अनफॉर्चुनेटली उसने वही घड़ा उठा लिया। वही घड़ा उठाया, पानी भरने गई, तो पानी भरा तो वो जो हीरा था वो तो पानी में चला गया, पानी भर के आ गई। तीसरे दिन फिर जब वो उस रास्ते से निकले तो भिखारी फिर वहीं पर, तो उसने अर्जुन ने कहा, अब क्या हो गया? तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर श्री कृष्ण ने उसको 2 पैसे दे दिए, कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब जब वो 2 पैसे लेकर के जा रहा था तो वहां पर देखा कि नदी के किनारे किसी ने एक मछली पकड़ी होगी, वो मछली बहुत तड़प रही थी। तो बहुत तड़पता हुआ उसको देखा तो उसने कहा, ये 2 पैसे से मेरा क्या बनेगा? तो वो 2 पैसे उसने उसको देकर के मछली खरीदी और उसको पानी में छोड़ दिया कि बेचारी इतनी तड़प रही है, इसको नया जीवन मिल जाएगा। जैसे उसने उसको पानी में छोड़ा, उसके मुंह से हीरा निकल गया। और जैसे उसने हीरा देखा तो उसने कहा, मिल गया मिल गया। अब जैसे ही बोला मिल गया मिल गया, तो वो चोर पीछे थे तो उनको लगा वो उसके लिए कह रहा है मिल गया मिल गया। तो वो एकदम घबरा करके गए कि शोर नहीं मचाओ, तुमने शोर मचाया गांव में तो गांव वाले हमें निकाल देंगे, ये लो तुम्हारी जो सोने की अशर्फियां अपने पास रखो। तो हीरा भी मिल गया, सोने की अशर्फियां भी जो थी मिल गई। तो फिर अर्जुन ने पूछा कृष्ण को कि ये क्या हो गया? तो उसने कहा कि जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था तब तक उसको कुछ नहीं मिला।
4: क्या बात,
3: लेकिन जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो मैंने उसके बारे में सोचा।
4: वाह क्या बात,
3: ये कर्मों का सिद्धांत है।
4: जब
3: हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम देना शुरू करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में सर्विस आ जाती है, सेवा का भाव आ जाता है और उसके अंदर भी निस्वार्थ आ जाता है।
4: ब्यूटीफुल।
3: तो फिर वो हमारे बारे में सोचता है, और इसलिए आप दुनिया में कभी भी किसी को मिलेंगे जो दान करते हैं, चाहे धन का, समय का, शक्ति का, स्किल का, किसी भी चीज का, उनको उस चीज की कभी भी कमी नहीं होती, वो चीज और ही बरकत को पाती जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है। परी लिखती हैं, हम अक्सर दूसरों की बात मान लेते हैं लेकिन अपने मन की आवाज को इग्नोर क्यों करते हैं?
4: नहीं करना चाहिए, दोनों के प्रति ध्यान देना चाहिए। हमें वो करना है जो सही है। अपना मन भी कई बार धोखा देता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन हर बार जो कहता है वो राइट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे हर बार कहते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। तो कोई मुझे मेरे मन की माननी है या आपके मन की माननी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो राइट है, जो सही है, वो करना है। चाहे वो आपका मन है या दूसरे का मन है, पर वो परख शक्ति होनी चाहिए कि राइट क्या है।
3: वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है।
4: विजडम अनुभव से भी आता है, स्क्रिप्चर से भी आता है, अच्छी बातें सुनने पढ़ने से भी आता है। और व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब आपको नहीं पता था तो इग्नोरेंस भी कोई क्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने विजडम को डेवलप करने की मेहनत करनी चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी हो कि राइट क्या है और आप राइट कर सकें।
3: स्टीव जॉब्स ने बहुत कमाल की बात कही थी, उसे कई लोग जरूरी नहीं मानते हैं, अग्री करते हैं, कि डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर वॉइस। वो इसलिए कह पाते थे ये बात क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है।
4: नहीं, अगर आपको अपने इनर वॉइस पर कन्विक्शन है
3: तब जरूर करें,
4: तब जरूर करना चाहिए। देखो, कई बार हमें क्लैरिटी होती है कि ये राइट है, पर हम दूसरों के ओपिनियंस में हमें अपने पर डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। एक है ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मेरा मन जो कह रहा है वो सही है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका मन करता है कि मैं मुझे ये करना है। पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये राइट नहीं है, ये आपके भले के लिए नहीं है। तो वो एक क्लैरिटी अलग चीज है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। एक एक कन्विक्शन है अपनी बात पर, अपने प्रिंसिपल पर आपको फेथ है। लेकिन आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अग्री विद यू या पीपल डोंट एक्सेप्ट यू।
3: और ये बहुत बात जरूरी है क्योंकि जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सरफराज हैं कानपुर से, लिखते हैं, क्या हर बार हाँ कहना अच्छी बात है या कभी ना कहना भी जरूरी होता है?
3: नहीं, हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, लेकिन ना कहने का तरीका ठीक होना चाहिए।
2: हाँ, वो गुस्से में नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, मना सभ्यता से करें, डिग्निटी से करें। ना तो कई बार कहनी पड़ती है। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि वो चीज राइट नहीं है तो भी आपको ना कहना पड़ेगा। दूसरा, हो सकता है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मैं आपको हाँ कर दूं, किसी चीज के लिए कमिट कर दूं और फिर ना करूं,
2: हाँ।
3: चाहे वो एक टीम के अंदर ही कुछ काम हो, मैं कहूँ नहीं नहीं हाँ जी करना था पर मैं करूं नहीं उस चीज को, तो भी वो चीज राइट नहीं है कमिट करके करना। और कभी ऐसा हो सकता है मैं कर भी सकती हूँ लेकिन आज मेरे पास पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी कमिटमेंट्स ले चुकी हूँ, तो भी मुझे आपको ना कहना पड़ेगा। सो देयर बी मेनी मेनी सिनेरियोस जहाँ पर ना कहना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहें,
2: बहुत बढ़िया,
3: डिग्निटी के साथ कहें, सभ्यता के साथ कहें, कई जगह पर ना कहना पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल. अगर आज अलार्म ने तुमको उठाया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं यानी कि प्रिसिला तुम्हें जगाने आई हूँ. अभी सुबह सुबह का सीन हो रहा है, कॉफी हाथ में है, आंखों में थोड़ी सी नींद है और दिमाग में एक सवाल है, यार ये वीकेंड कब आएगा. बस आ ही गया है वीकेंड और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स भी आ चुका है तुम्हारे कम्यूट में, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारी लाइफ के हर कोने में तुम्हारा साथ देने के लिए. मैं यानी कि प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ अगले कुछ घंटों के लिए. थोड़ी सी बॉलीवुड की बातें करेंगे, थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें करेंगे एंड थोड़ा सा रेडियो फ्रेंडली बकबक भी करने वाले हैं. साथ साथ में तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स भी मिलने वाली हैं और बहुत सारी मिर्चीदार वाइब्स भी मिलेंगी, जैसे तुम अपना दिन और मिर्चीदार बना सकते हो. और हाँ, मुझे सिर्फ रेडियो पर नहीं सुनना है, तुम मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. फॉलो करो मुझे वहाँ और व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. सो वॉल्यूम फुल ब्यूटिफुल. मैं होप सुना तुम्हारे साथ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
11: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days पीडियाट्रिक्स। दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
10: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
11: वी आर ओपन 7 Days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: Ab, mirchi kha.
22: Radio Mirchi, it's hot.

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग मैं देसी मिर्ची पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और आज है सितंबर 17th एंड वेलकम टू दिस डे दैट ईयर। चलो रिवाइंड करके पता करते हैं 1683 में क्या हुआ था। डच साइंटिस्ट एंटनी फैन लेयू एंड हुक ने माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व करके रिपोर्ट किया। फिर 1787 में फिलाडेल्फिया में US कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ। 1862 में बैटल ऑफ एंटिएटम अमेरिकन सिविल वॉर का सिंगल ब्लडीएस्ट डे था। हिस्ट्री का वो चैप्टर जहां पर रफ डे बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा। 1948 में हैदराबाद स्टेट का इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन हुआ फॉलोइंग ऑपरेशन पोलो। 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुए इजिप्ट के अनवर सदात और इसराइल के मनाखेम बेगिन के बीच में, विद जिमी कार्टर प्लेइंग अ की रोल इन द टॉक्स। मनाखेम बेगिन के बीच विद जिमी कार्टर प्लेइंग अ की रोल इन द टॉक्स। 1983 में विनेसा विलियम्स बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन क्राउन्ड मिस अमेरिका। और फिर आया 2011, राइट हियर इन न्यूयॉर्क सिटी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट बिगैन जुगोटी पार्क। 2013 में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 रिलीज हुआ और गेमर्स ने दुनिया भर को कह दिया कि भैया आज ऑफिस नहीं जाएंगे, हम तो लॉस सैंटोस जाएंगे। और आज गणेश उत्सव का चौथा दिन भी है, बप्पा के नाम एक बिग गणपति बप्पा मोरिया। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस। और अपनी रिक्वेस्ट शाउट आउट या कुछ और भेज सकते हो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। और बॉलीवुड से बप्पा के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हो तो मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
9: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: फ्री एंट्री, one day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
20: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
21: 13 सितंबर रविवार
20: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।

0: ਤਾਂ ਜੀਤੂਰਾਜ ਓਨਲੀ ਔਨ ਮਿਰਚੀ ਇਟਸ ਹੌਟ।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram sari aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: Beta, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स।

0: सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और ये तुम्हारा वेदर अपडेट। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड 68 डिग्रीज फारेनहाइट, पार्टली क्लाउडी है बट इट फील्स क्लोजर टू 70 डिग्रीज फारेनहाइट, क्योंकि अपेरेंटली ह्यूमिडिटी को भी अपना ओपिनियन देना जरूरी है। मॉर्निंग स्टार्ट्स नाइस एंड सनी, बाय नून वी आर हिटिंग अराउंड 82 डिग्रीज फारेनहाइट, फीलिंग क्लोजर टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट। आफ्टरनून में टेम्परेचर पीक्स एट अबाउट 85 डिग्रीज फारेनहाइट विद प्लेनी ऑफ सनशाइन एंड जस्ट अ टाइनी चांस ऑफ रेन। लेकिन शाम को क्लाउड स्टार्ट रोलिंग इन, अराउंड 7 PM लाइट रेन इज पॉसिबल एंड बाय द टाइम इट्स 11 PM द चांस ऑफ शावर्स जंप्स टू अराउंड 65%। सो इफ यू आर हेडिंग आउट टुनाइट, अम्ब्रेला साथ में ले जाना, बिल्कुल मत भूलना, ओके? वरना जर्सी की सड़कों पर तुम्हें फ्री में शावर मिल जाएगा। टुडेज रेंज इज रफली अराउंड 68 टू 85 डिग्रीज फारेनहाइट एंड वी कुड सी अबाउट 5 mm ऑफ रेन ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स, अनलाइक द लास्ट 24 आवर्स जब 0 mm की बरसात हुई। And hey, कल का जो हाई था वो था 83 डिग्रीज फारेनहाइट, सो टुडे इज जस्ट अ लिटिल बिट वार्मर। और ज्यादा जानकारी के लिए तुम मुझसे बातें भी कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड सेंड मी बॉलीवुड से बप्पा का तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग, आई विल ट्राई टू प्ले इट ऑन मिर्ची। व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर डायरेक्ट मैसेज करो इंस्टाग्राम एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और चलो देखते हैं आज के टॉप थ्री अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहले अमेरिका फेडरल रिजर्व हैज रेज्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय अ क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट, टेकिंग इट फ्रॉम 3.75% टू 4%, द फर्स्ट हाइक सिंस 2023। द फेड सेज इन्फ्लेशन इज स्टिल एलिवेटेड, ट्रांसलेशन है कि बोरोइंग मनी जस्ट गॉट अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। नंबर टू पर, द यूएस हाउस हैज पास्ड रशिया सैंक्शंस बिल दैट कुड ऑथराइज टैरिफ्स ऑफ अप टू 100% ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन एनर्जी इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। द बिल now goes to President Trump. India says it's monitoring developments and remains focused on energy security and diversified sourcing. And lastly, Fiji has declared a national HIV crisis following a sharp rise in infections. UNAIDS says new infections have increased dramatically and Fiji is expanding testing, treatment and prevention efforts. Now this one's important because awareness, testing, treatment and removing stigma really matters. And that was Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. Connect with me, Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Busca bana, busca bana, saca bana. Bana. Burka, burka. La virpa la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर, एक्चुअली
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
11: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
11: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
11: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 954-918-8589।
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
15: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
19: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
20: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
21: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
22: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
22: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
24: एक ही होता है।
22: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा थोड़ा सा फिल्मी कोर्टरूम अपडेट दे देती हूँ तुम्हें. दिल्ली का हाई कोर्ट जो है उसने मिर्जापुर द मूवी में यूज हो रहे सॉन्ग शूरवीर पर ऑब्जेक्शन रेज किया है. ये सॉन्ग जो है महाराणा प्रताप को ट्रिब्यूट है और कोर्ट ने कहा है कि सॉन्ग का यूज प्राइमा फेसी गुड टेस्ट में नहीं लग रहा है, स्पेशली बिकॉज इट फेल्ट लाइक वायलेंस को ग्लोरिफाई करने का कंसर्न आ रहा है. अब ट्विस्ट ये है कि CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कोर्ट को बताया है कि वो जो सॉन्ग है उसको रिप्लेस करके बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने पर कंसिडर किया जाएगा और डिसीजन जो है वो एक वीक के अंदर ही एक्सपेक्टेड है. तो मिर्जापुर का फॉर्मूला जो है अभी भी वही है, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा टेंशन और एक कंट्रोवर्शियल गाना डाल दो. ये सारी फिल्में आजकल इसी फॉर्मूला पे चल रही है, राइट? तुम्हें क्या लगता है, ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है या एक कंट्रोवर्शियल मिस्टेक है? लेट मी नो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
15: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
16: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
15: Wait, they can see us on Sunday?
16: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
20: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
19: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
20: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
19: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue.
21: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
22: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
21: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: क्या कहा आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, तो जरा रुको यार, क्योंकि आज तुम्हारे बर्थडे स्क्वाड में काफी वीआईपी लोग शामिल हैं। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज का बर्थडे रोल कॉल इज गिविंग फुल स्टार पावर। कैसे? सबसे पहले हैप्पी बर्थडे है आज 17 सितंबर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का, एक्ट्रेस राम्या कृष्णन का एंड प्रिया आनंद का, और साथ साथ में लेट एक्टर मुकुल देव की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और हिस्टोरिकली बर्थडे स्क्वाड में आज सोशल रिफॉर्मर पेरियार भी है, लेकिन वेट, इंटरनेशनल गैंग भी कम नहीं है। हॉलीवुड के काइल चैंडलर, डैनियल ब्रूक्स, कैसेंड्रा पीटरसन, एके एलवीरा बॉबी ली और लेजेंडरी जॉन रिटर। बिहाइंड द कैमरा है बैज लूरमैन एंड पॉल फीग, और स्पोर्ट्स फैंस के लिए पैट्रिक माहोम्स, फिल जैक्सन और अलेक्जेंडर ओवेकिन। मतलब कि 17 सितंबर को पैदा होने वाले लोगों का आज बर्थडे नहीं है, कास्टिंग कॉल लग रहा है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हें अपने शाउट आउट भेजने तो मुझे भेजो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची पर करो, 9033647244 पर। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, आज का दिन सुपर डुपर हिट हो तुम्हारे लिए, जैसे कि आने वाले सॉन्ग्स। फिलहाल चिपक के बैठो, यहीं पर जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram Sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka, or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega Royal Bridal Lehenga Collection. Stunning संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट

0: destination, Fashion Queen.
1: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
2: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जी मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्राउंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GIS सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 मंथ की फाइनेंसिंग में ज्वेलरी घर लेके जाए और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। कमिंग अप मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
3: जब

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi people. I am Priscilla. You are with me. This is Mirchi Hour Ka 3.
2: Mirchi Hour Ka 3.
1: सबसे पहले कोलकाता में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर वेस्ट बंगाल बीजेपी हेडक्वार्टर्स में उनकी 5.7 फुट बैक स्टैच्यू अनवेल हुई है। आसनसोल के स्कल्प्टर सुशांत रॉय ने इसे बनाने में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगाए हैं। स्टैच्यू में मोदी जी को बंगाली धोती कुर्ता में डिपिक्ट किया गया है। नामेजुबर पुतिन के बर्थडे मैसेज में एक इंटरेस्टिंग हैशटैग था, द्रुज़बा दोस्ती। द्रुज़बा रशियन में फ्रेंडशिप है और दोस्ती, वेल वो तो हम सब जानते हैं। बेसिकली रशियन हिंदी फ्रेंडशिप का कॉम्बो पैक था ये। पुतिन ने इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए मोदी के रोल को काफी हाईलाइट किया है। एंड लास्टली फुटबॉल फैंस, थोड़ा सा हेडफोन टाइट कर लो यार, क्योंकि डेविड बेकहम सेज लियोनेल मेसी शुड विन द 2026 बैलन डोर, पुटिंग हिम अहेड ऑफ नेम्स इंक्लूडिंग हैरी केन एंड Bellingham. Messi already has 8 Ballon d'Or wins, and after his World Cup performance, Beckham is backing him for number 9. And that's Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana.
2: ¡Gámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: हेलो
4: मिल गया
5: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
5: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
6: मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
11: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
12: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
13: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
14: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
17: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
18: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
17: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
18: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
19: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
1: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
20: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
21: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
20: Wait, they can see us on Sunday?
21: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
22: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
23: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
22: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
24: Free entry.
0: one day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Rashi Zone 1 on Mirchi Mornings. Priscilla is here with you.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is, यानी कि मेष राशि बॉस आज ओवर अचीवर मोड थोड़ा सा ऑफ है. काम जरूरी है लेकिन रेस्ट को भी लग्जरी आइटम नहीं बनाना है. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 4. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दिल को पीस चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी, काइंडनेस या किसी की हेल्प, गुड कार्मा, गुड वाइब्स मिलेगी. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 8. जेमिनी यानी मिथुन राशि, चैलेंजेस आए तो पैनिक नहीं करने का है. योर माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉब्लम. आज ब्रेवरी इज योर सुपर पावर, गो गेट इट. लकी कलर इज कोबाल्ट. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी खड़ग राशि, आज बॉडी को भी थोड़ा सा प्यार दो यार. हेल्दी फूड, थोड़ा सा मूवमेंट और नेटफ्लिक्स को 24 आवर जिम समझने की गलती ना करें. लकी कलर इज मिंट. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, रोर लेटर, रेस्ट नाउ, इनफ स्लीप लो वरना एटीट्यूड तो रॉयल रहेगा, बैटरी जो है वो 2% पर फुस हो जाएगी. लकी कलर इज मेरी गोल्ड. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, फैमिली प्रॉपर्टी की कोई न्यूज मूड को डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग, ब्रीद इन ब्रीद आउट. और हर बात का आंसर इमीडिएटली देना जरूरी नहीं होता है बेटे, समझे. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 7. एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट 1. अभी बाकी बची 6 राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में. डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी है 9033647244. अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: Jai Gurudev. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
14: 13 सितंबर रविवार
13: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
21: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
20: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
3: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक राष्ट्रीय जोन पार्ट द्वितीय में मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला।
2: मिर्ची राशि जोन
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि आज होप्स और ड्रीम्स का ब्राइटनेस फुल हाई है। कीप द ऑप्टिमिज्म अलाइव, फ्यूचर को थोड़ा सा गुड एनर्जी वाला ट्रेलर तो दिखाओ, हो सकता है किस्मत बदल जाए। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 6। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, नेगेटिव लूप को आज पोलाइटली अनफॉलो करो, सिचुएशन में गुड साइड ढूंढो, माइंडसेट चेंजेस द होल पिक्चर। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस धनु राशि, पास्ट सक्सेस इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस स्पेशली अराउंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स, बस एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा सा होमवर्क भी कर लेना, मनी को ना ब्लाइंड डेट पर मत भेजना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज प्रोडक्टिविटी का प्रेशर थोड़ा सा साइड में रखो, एंजॉय करो, हैव फन, लाफ अ लिटिल, कैलेंडर में हैप्पीनेस का शेड्यूल भी होना चाहिए बेटे। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बॉडी को मूवमेंट चाहिए, स्पोर्ट्स, वर्कआउट, एनीथिंग दैट गेट्स यू मूविंग, आज काउच से ब्रेकअप कर लो। लकी कलर तुम्हारा है इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 10। पाइसीज यानी कि मीन राशि, सेल्फिश फ्रेंड्स को इमोशनल वीआईपी एक्सेस देना बंद करो भाई, प्रोटेक्ट योर पीस बिकॉज योर मेंटल स्पेस इज नॉट अ फ्री को वर्किंग ऑफिस। लकी कलर इज प्लम, लकी नंबर इज 12 एंड दैट इज योर राशि जोन। स्टार्स को सीरियसली लेना तो है लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट और मिर्ची मारकर। मिर्चीदार बैंकर्स का टाइम है, तुम जब तक जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
0: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Irchin Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में on that's a wrap on मिर्ची मॉर्निंग्स. लेकिन जाने के पहले एक स्टोरी जो हर देसी पेरेंट को सुननी चाहिए, स्पेशली अगर क्रेडिट कार्ड जो है फोन में सेव्ड है. इंडिया के एक 9-year-old चाइल्ड ने अपने माइनक्राफ्ट और रॉब्लॉक्स गेम प्ले वीडियोस को प्रमोट करने के लिए पापा का कंपनी क्रेडिट कार्ड यूज किया है एंड रिपोर्टेडली रुपीज 1.13 करोड़ के यूट्यूब एड चार्जेस हो गए. और सबसे ज्यादा क्रेजी पार्ट यह है कि पापा का कहना है उन्होंने इनिशियली सिर्फ 1900 का प्रमोशन सेटअप किया था क्योंकि बेटा कंप्लेन कर रहा था कि व्यूज नहीं मिल रहे हैं. लेकिन कार्ड की डिटेल्स जो है वो डिवाइस में सेव्ड थी. और असली प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब ऑफिस वालों को ये पता चला खर्चे का और उन्होंने पापा से एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन मांग लिया. तब पापा को पता चला कि बेटा जो है 1.13 करोड़ रुपीज एड्स पे खर्च कर चुका है. तो बेटे का क्वेश्चन कि पापा मेरे व्यूज नहीं आ रहे, अब पापा की परेशानी बन गई कि अब ऑडिट आने वाला है. और इसी बात पर मैं बोले तो प्रिसिला जाने वाला है, यानी कि जाने वाली हूँ. टाटा बाय बाय फ्रॉम मी मिर्ची मॉर्निंग्स पर से आज के लिए. मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी पर. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो और मुझे फॉलो भी करो जाकर. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244, दैट्स 9033. अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: एक ट्रेंड फॉलो करने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड ही आ जाता है। जैसे फिलहाल चल रहा है कि भाई अपनी पिक्चर्स आप 80s रेट्रो फॉर्म में पोस्ट कीजिए, और ऐसा करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी AI का। तो जहाँ एक तरफ हम मजे मजे में इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज को 80s रेट्रो स्टाइल में चेंज करके पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अलग रियलिटी भी है। सो AI मॉडल्स को रन करने वाले जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल GPUs होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इन सर्वर्स को कूल रखने के लिए भी बड़े अमाउंट में पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वही पानी जो हमारी पृथ्वी से गायब होता जा रहा है। और ये इम्पैक्ट ना सिर्फ डेटा सेंटर्स तक नहीं, इनफैक्ट AI चिप्स बनाने के लिए मिनरल्स की माइनिंग और एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व्ड है। अब आप सोचेंगे कि यार एक इमेज से ऑब्वियसली कोई बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा ना, बट फैक्ट तो ये भी है ना कि हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है। इन शॉर्ट यहाँ कंसर्न है स्केल का। जब मिलियंस ऑफ यूजर्स एक ट्रेंड के चक्कर में बार बार इमेजेस जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हार्डवेयर की डिमांड कलेक्टिवली काफी बढ़ जाती है। तो मुद्दे की बात यह है बाबू मोशाय कि ट्रेंड का हिस्सा बनो, सही है, बट हर दूसरे ट्रेंड को फॉलो करने से पहले थोड़ा माइंडफुल होना भी जरूरी है। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Pit Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virba, la burga. Milchi, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका। चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है। हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
10: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
11: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
10: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
12: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
13: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
14: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
19: Listener, mein back to back gana sunega.
1: Back
0: टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फ्रॉम ग्लैम टू गुरु अवतार, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रेनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं। माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रेनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों। नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट। बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रेनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मनोज बाजपेयी इस महात्मा गांधी, सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी। वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज। अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग, बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजंस। वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: ओह नो,
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: Inefficient,
14: very complex,
15: clumsy और
16: confusion ही confusion।
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
17: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
18: खेलो मगर प्यार से।
19: श्रुति श्रुति
18: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। किसी के दिल या जज्बात से खेलने की बात नहीं, मैं तो अपनी मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू शाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है मनोज जी।
1: हाय श्रुति, हाउ आर यू?
18: मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं?
1: फर्स्ट क्लास एकदम रहे।
18: तो क्या आज आप हमारे फिल्मची बनना चाहते हैं?
1: अरे मेरा नंबर आ गया क्या? Absolutely, why not?
18: All right, तैयार है आप?
1: जी।
18: रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
1: मोहरा। मोहरा,
18: यस इट इज। मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
1: अक्षय कुमार।
18: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का री इंकारनेशन समझा जाता है?
1: चांदनी चौक टू चाइना।
18: क्या बात, चांदनी चौक टू चाइना में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
1: दीपिका पादुकोण।
18: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
1: पद्मावत।
18: पद्मावत में राजपूत राजा कौन है?
1: शाहिद कपूर।
18: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट हैं जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चार्म समझते हैं?
1: किस्मत कनेक्शन।
18: यस, किस्मत कनेक्शन की फीमेल लीड कौन है?
1: जो कहानी की एक्ट्रेस है।
18: हाँ हाँ हाँ हाँ,
1: विद्या बालन।
18: विद्या बालन की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
1: पा।
18: यस, पा में असली पापा कौन है?
1: अभिषेक बच्चन।
18: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
1: रन।
18: यस, रन की फीमेल लीड कौन है?
1: रन की फीमेल लीड ये तो है।
18: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आपने बहुत मस्त गेम खेला है।
9: अरे थैंक यू सो मच, मेरे को लग रहा था मैं टाइम नहीं पहुंच पाऊंगा,
18: बट आपकी इस मेहनत से ये गेम काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। इसी के साथ मैं आपको बनाना चाहूंगी आज के हमारे पहले
19: मिर्ची फिल्म ची।
18: बाकी इस गेम को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम कीजिए एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगे कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
5: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
4: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स ऑल्सो ऑफरिंग 0 क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi. Aha.
13: खेलो मगर प्यार से।
14: श्रुति श्रुति
13: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम की बात कर रही हूँ। एनीवे, सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ जो आज मैंने मनोज जी के साथ की। बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं संदीप जी। हेलो, कैसे हैं सर?
15: मैं बढ़िया, आप कैसे?
13: मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या तैयार है गेम खेलने के लिए?
15: हाँ जी, हाँ जी।
13: तो आपके पहले इस गेम की शुरुआत मनोज जी ने की, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, वो जिस सवाल पे अटके हैं उसके आगे से मैं ये गेम आपके साथ खेल रही हूँ। सो द क्वेश्चन वॉज, फिल्म रन की फीमेल लीड कौन है?
15: भूमिका चावला।
13: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है?
15: तेरे नाम।
13: तेरे नाम में राधे कौन है?
15: सलमान खान।
13: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच टावल डाल के डांस करते हैं?
15: ये मुझे बहुत पसंद है, मुझसे शादी करोगी।
13: यस, मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है?
15: प्रियंका चोपड़ा।
13: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है?
15: फैशन।
13: फैशन में ईवीवीवीवी कौन करता है?
15: कंगना।
13: यस इट इज कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता जा रहा है?
15: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
13: में उनका पति कौन है?
15: आर माधवन
13: की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है?
15: थ्री इडियट्स
13: में प्रिंसिपल की बेटी कौन है?
15: करीना कपूर।
13: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है?
15: जब भी मेट.
13: यस एंड वी हैव मेट अनदर मिर्ची फिल्म जी फॉर द डे.
15: थैंक यू
13: सो मच. आई जस्ट होप आपको मजे आए हो.
15: बहुत मजा आया श्रुति. थैंक यू सो मच.
13: तो इसी बात पे मजे को चार गुना करते हैं विद दिस टैग
16: मिर्ची फिल्म ची.
13: नहीं नहीं नहीं, आपको फोमो में जाने की जरूरत नहीं है यार. बस मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए. रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.
16: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: यार डुएट्स का मतलब हमेशा रोमांटिक गाने तो नहीं होते ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई अच्छा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डुएट्स कौन से पसंद है तुझे, तो लोग रोमांटिक नंबर्स की बात करेंगे जहाँ हीरो हीरोइन बारिश एक अम्ब्रेला और बैकग्राउंड में वायलेंस बज रही हो। बट आज ना मैं अपने पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू उन गानों की बात करूंगी जहाँ रोमांस से ज्यादा दोस्ती मस्ती कॉम्पिटिशन और ब्रोमांस है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेल डुओज ने हमें कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जो सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कभी सलमान गोविंदा की मस्ती, कभी अक्षय सैफ का अनाड़ीपन, और कभी अमिताभ बच्चन गोविंदा का लार्जर देन लाइफ स्वैग। तो लिस्ट की शुरुआत करना चाहूंगी विद द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। नंबर दो से विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना वेल्ले। नंबर तीन पे फिल्म है खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक। नंबर चार पे फिल्म देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक। And last but definitely not the least, number 5 पे फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टाइटल ट्रैक। So let's begin 2007 में आई फिल्म पार्टनर के इस गाने से।
3: Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Lummy, lummy, say. Want a partner? Oh, partner. Do you want a partner?
0: सलमान खान और गोविंदा की कॉमेडी केमिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और इसी एनर्जी को कैप्चर करता है ये पर्टिकुलर गाना, जहां साजिद वाजिद का सुपर पेपी कॉम्पोजिशन है, उदित नारायण और वाजिद की इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस हैं, और ऊपर से शान और क्लिंटन सरेजो जैसे वॉइसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड यू नो इस गाने की सबसे खास बात क्या है, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं लगता, एक बॉयज नाइट आउट का साउंड ट्रैक लगता है। एंड ऑनेस्टली अगर इसका हुक सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं तो ये आपकी गलती नहीं, दिस इज नॉस्टैल्जिया हिटिंग यू ब्रो। वैसे इस गाने को लेकर आपकी कोई मेमोरी रही है देन डू शेयर दैट विद मी। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी के चार गानों के डिस्कशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन, इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show, and the little ones, a dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar, September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey.

0: कुछ गाने ना आपको याद नहीं आते, वो आपको आपकी पुरानी जिंदगी में टेलीपोर्ट कर देते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और आज अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही गानों को डिस्कस कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मेल डुओ डांस नंबर्स, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है यार। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये गाना। जहाँ वेल्ले का मतलब ये नहीं कि आप जॉबलेस हैं, इट्स अबाउट बीइंग ग्लोरियसली केयरफ्री। एंड बेसिकली इस गाने के थ्रू ना उस फेस को सेलिब्रेट किया गया है जब लाइफ का बिगेस्ट टेंशन होता था कि भाई आज क्लास अटेंड करना है या बंक करना है, मतलब दोस्तों के साथ बिना किसी रीजन के घूमना, स्टूपिड प्लान्स बनाना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना एंड व्हाट नॉट। बाकी इस गाने को और भी ज्यादा एजी बना दिया रियल लाइफ सिंगर म्यूजिशियन डुओ विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की एनर्जेटिक वॉइसेस ने। चलो अब आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 1994 की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये टाइटल ट्रैक। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की पेयरिंग, जिसपे अभिजीत और उदित नारायण की वॉइसेस ने एकदम परफेक्ट म्यूजिकल आइडेंटिटी दे दी। सो ये गाना बेसिकली दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज को डेडिकेटेड है, जो इन जनरल हर दोस्तों के बीच देखी जाती है, बट व्हेन दे कम टुगेदर इट इज अ फुल पैसा वसूल। बाकी अनु मलिक का एनर्जेटिक कॉम्पोजिशन और माया गोविंद के सुपर कैची लिरिक्स ने इस गाने को 90s का प्रॉपर सिग्नेचर ट्रैक भी बना दिया था। वैसे मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही गानों की बातें बाकी हैं, बट अगर आप इसमें अपना कोई एडिशन करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy और
12: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Yeah. Meethi Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi, aha.
16: अच्छा, बीटाउन के डांस डुओ नंबर्स के नाम पे आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है?
17: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
18: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
16: Maybe a song like डोला रे डोला रे डोला रे डोला। बढ़िया यार, आज मैं अपने पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू बीटाउन के मेल डुओ डांस नंबर्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। नंबर दो पे वेले फ्रॉम द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। नंबर तीन पे मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी का टाइटल ट्रैक। और अब नंबर चार पे बारी है टू टॉक अबाउट द सॉन्ग देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक, जिसका सिंपल सा फंडा है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। दो हजार ग्यारह की फिल्म देसी बॉयज और उसका एंथम मेक सम नॉइस फॉर द देसी बॉयज। केके और बॉब की वॉइसेस, प्रीतम का म्यूजिक और कुमार के लिरिक्स, और भाई पूरा गाना बेसिकली एक सेलिब्रेशन है मेल फ्रेंडशिप, फ्रीडम और अपनी लाइफ को अपने रूल्स पे जीने का। वेल, इस सॉन्ग की एनर्जी का कमाल देखिए। आपको लिरिक्स याद हो ना हो, मेक सम नॉइस ये आते ही ना आपके हाथ ऑटोमेटिकली हवा में चले जाते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट दिस आइकॉनिक सॉन्ग। भाई आज भी एक 90s का बच्चा जब ये गाना सुनता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोविंदा और अमिताभ बच्चन ही चल रहे होते हैं। 1998 में आई थी ये फिल्म, जहां अमिताभ बच्चन और गोविंदा की लार्जर देन लाइफ केमिस्ट्री को उदित नारायण और सुदेश भोसले ने अपनी आवाजें दी थी। गाने में विजू शाह का म्यूजिक था, समीर के लिरिक्स थे और डेविड धवन का फुल ऑन कॉमेडी यूनिवर्स विद एवरीथिंग लार्जर देन लाइफ। बेसिकली दो सुपरस्टार्स प्लस दो पावरफुल मेल वॉइसेस प्लस 90s बॉलीवुड मैडनेस इज इक्वल्स टू वन अनफॉरगेटेबल एंथम। वैसे आप मेरे मेल डुओ डांस नंबर्स वाली इस लिस्ट में और कोई नाम ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Worried अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Yeah, Meethi Mirchi, brighten up your day, we will find a way on Meethi Mirchi,
9: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फ्रॉम ग्लैम टू गुरु अवतार, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रेनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं। माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रेनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों। नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट। बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रेनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मनोज बाजपेयी इस महात्मा गांधी, सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी। वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज। अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग, बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजन्स। वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो, उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
10: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें। इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।
1: सावन का महीना पवन करे सो,

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: मुकेश जी।
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया उसमें, ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
13: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो? ओहो, व्हाट अ प्राउड फीलिंग, है ना? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: कुछ कहता है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
2: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
3: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
2: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Healthcare में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
14: वो शाम

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ, और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला, जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है, चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना, उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना अप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद

अब तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर वन टू वन बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव माय हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे। यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए। वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वाज लिटिल स्केप्टिकल, ही वाज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पे लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम करके फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना। कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: Milci. Iscabana, sacabana, rabana. Burga, burga. La
1: virgua, la burga. Milci, burga. हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार। सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं।
2: मैं कल को अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए?
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
8: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
9: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
10: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

10 सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
10: 13 सितंबर रविवार
9: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962, आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग अवे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Listener mein back to back gana sunega,
10: back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है ना, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिप सिंक करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिप सिंक करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज़, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज़ कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आई, उनसे गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में। एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगे। श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन, इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड, फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज, फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु इज ऑल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वॉज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दीवाना

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे, व्हाट डू वी डू?
8: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ, वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
7: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
8: वी आर ओपन 7 days a week इंक्लूडिंग संडे, द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3216.

0: अरे साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

थर्सडे आ गया है दोस्तों, और इसका मतलब है वीक ऑफिशियली ऑन ट्रैक है। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन परफेक्ट है थिंग्स इन मोशन के लिए। प्लेलिस्ट लाउडर होने वाली है, मैसेजेस थोड़े फास्टर आने वाले हैं, और प्लान्स का टोन सडनली अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि यार थर्सडे वो स्वीट स्पॉट है जहां प्रेशर कम लगता है और एक्साइटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे का ट्रेलर, वीकेंड का स्नीक पीक। तो यार ऑफिस हो या होम, आज एनर्जी का ग्राफ थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है और हम भी उसी फ्लो में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि शाम शानदार का थर्सडे एडिशन फुल ऑन पेस पे चलने वाला है। तो आप भी मुझे बताइए कि आप आज किसके लिए रेडी हो, म्यूजिक, मस्ती या दोनों। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI विद योर थर्सडे मूड सॉन्ग। और तब तक के लिए मेरी थर्सडे मूड का ये रहा अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी
4: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लगाया नहीं
4: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब
4: नहीं। मैं कल को
3: फोटो खींचे,
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
4: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
3: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
4: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Tera kya hoga, Kalia?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab, mirchi kha.
0: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्पररी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन दिस शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन।
10: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: फ्री एंट्री, वन डे One place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
17: लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
20: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
21: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फ्लैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री, लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस सॉन्ग दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
10: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.
17: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
18: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया, तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी, सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना, विच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार, इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था, यार दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार, मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए, तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये, तो मुझे जरूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Isca bala, busca bala, saca bala. Ya bala. Burga, burga. La vida bala, burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें, और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू-कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
11: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
12: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
11: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
18: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
21: दोस्तों, हर दिन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जरूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम जरूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
22: जय साईं राम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम। इफ यू आर होम बायर और होम ओनर, हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। द फेडरल रिजर्व इंक्रीज इट्स बेंचमार्क रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। So does that mean that mortgage rates automatically jump up by 0.25%? And the answer is no. In fact, mortgage rates can move before, during, or even opposite to a Fed decision, because the market is constantly pricing in expectations for what's coming next. For today's buyers, the biggest takeaway is this: don't make your home buying decision based solely on what the Fed did yesterday. Focus on your specific payment, your loan program, your down payment, your credit profile, and the overall cost of the loan. And remember, if rates improve in the future and your situation qualifies, refinancing may be an option, but you can't refinance a purchase you never made. So if you are thinking about buying a home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.875%. 20-year fixed mortgage rate, 6.625%. 15-year fixed mortgage rate, 6.125%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Well, friends, remember, Lion Mortgage offers conventional loans, FHA loans. We have great rates on jumbo loans. Also, we are now offering DSCR loans, bank statement loans. We are also offering home equity loans. And also, remember, listeners, if you are a first-time home buyer, FHA loan also makes sense because they have got great rates and low down payment. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
23: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए, जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
10: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा एनजे। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
18: दोस्तों कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के जमाने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपने जिंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखा, इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया।

0: It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
7: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, muskura kar peesti, apne ghar ke aangan mein, din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano. Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
15: दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धियो। क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सब पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलोडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी, SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट करते। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
11: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
18: Listener MA, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
0: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
20: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो, उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प, तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
21: This is the tribute to Talaiwa from King Khan and one and only
22: Yo Honey Singer.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033-मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
13: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
14: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Sham Shanda, let's go not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस, और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। GPS बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रखकर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। DM me on @RJMirchiSiddhi और फिलहाल इस थ्रोबैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में।

0: सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
1: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
1: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
1: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
11: एक जमाना था जब कमिंग अप नेक्स्ट का मतलब सच में वेट करना होता था। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे में। तो चलिए थ्रो बैक टू दोज टाइम जब यार संडे का इंतजार सिर्फ एक शो के लिए होता था। उसे सोचिए, आजकल तो एक क्लिक में पूरा सीजन मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे रात का वो काउंटडाउन, क्योंकि यार फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली होती थी, उसका मजा ही अलग होता था। और अगर बीच में लाइट चली गई तो बस उस दिन का मूड ही ऑफ। और शायद इसीलिए उस वक्त एंटरटेनमेंट की वैल्यू भी अलग थी। हम देखते कम थे, इंतजार ज्यादा करते थे, और शायद इंतजार ही उस खुशी को इतना बड़ा बना देता था। तो आज घर जाते हुए एक काम जरूर कीजिए, किसी पुराने टीवी शो का टाइटल सॉन्ग याद करने की कोशिश कीजिए और देखना पूरा बचपन बैकग्राउंड में प्ले होने लगेगा। और हाँ, मुझे जरूर बताना वो कौन सा शो है जिसके लिए आप टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए उस जमाने की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये एवरग्रीन बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी
3: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पगला।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
9: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
10: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
11: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
14: 13 सप्टेम्बर रविवार
13: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
15: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
16: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
15: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
16: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Tera kya hoga Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
19: Ab mirchi kha.
1: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक लेजेंडरी बारिश वाले गाने से। जी हाँ दोस्तों, जब भी बारिश की बात होती है ना तब एक गाना दिमाग में जरूर आता है, टिप टिप बरसा पानी। वैसे तो यार स्क्रीन पे देखो ना तो फुल ऑन रोमांटिक लगता है, एकदम फुल रोमांस इन द रेन। लेकिन पर्दे के पीछे रवीना टंडन जी ने बताया कि शूट कितनी ज्यादा टफ थी, मतलब रेन मशीन्स के साथ स्लिपरी फ्लोर और वो सारी और मल्टीपल रीटेक्स। वैसे तो यार डांस ग्लैमरस तो लगता है, स्पेशली रवीना जी इन द येलो साड़ी, पर सेट पर सबको बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो समझे दोस्तों, मतलब बॉलीवुड में ना यार रेन सॉन्ग रोमांटिक तो लगता है लेकिन पर्दे के पीछे सबकी बैंड बजती है। वैसे क्या आपने कभी इस गाने पे रेन में डांस करने की कोशिश की है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
16: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल, यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देवानंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देवानंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों, ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
13: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।